0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? म्योती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उल्लेख कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माँ फाही।
3: टेक के दुनियां अलगन में खोग्य मिलनी किताब पन दतरुकं हंदांग हुरी किताब पेफुलन तो मिस सवाल के जवाब दतरु निमुम के कुरिंग अलगन त्याय हुं तेरी ना हिस्सा कुराना टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफनी तक उनके नमंदा बदल तक बलानु लादू कोलमकी कुरम वाने वारो के कमेनो मैं हफ्ते एक खास टेक के एम फाउ के खबर तंग डुआ हाला त्ये वे फ्रंट तैयार तो एम वे मा खबर फरबदे एक बदल तक आको फरबदे गिनस्ते टेक के खबर तंग अडुआ हालमा
0: खबर

0: रीति को मिरावर में ख्याल देने दत्ते गाम से हर रीत को रावर नु किएन बंच की दान कम रावर नु किएनगे इमशा
1: लब्बा
0: प्रोग्राम ने में तंग अड़ो हाल इन छे मंगे गोरत नंग गोस होते
1: लब्बा
0: वाके वाला आ कम में कुछ के फरा तुम वेस में दो हम हदिया इन एबले बे अड़ो हंते बिको देन हेकम दत मंगे टीम वेस में दो ते वरत तैयार होगे ऐसा ते को दिन नवारा गिना हादिया तक गिने स्ते हम हमारे गोतन तैयार कर लाफे रीति हादिया गने काश में होती
2: अर्गन के नमकी आला आली आमिर अर्गन में दो हुशाले द म्योले नी रावरे

0: हमें खान का मस्तक चाहिए शिब्बा।
1: हॉलीवुड के मशहूर हॉरर कॉमेडी फिल्म रेडी और नॉट के देवन बै रेडी और नॉट हिया आइकम डिजिटल प्लेटफॉर्म तोगा रिलीज कुरिता एम में दोहे के तेरे का आदिया खिलाफ बड़ो कामयाबी हो दैफी खुशाला देनी फातमत समा
2: हॉलीवुड के मशहूर हॉरर कॉमेडी फिल्म रेडी और नॉट के देवन बै रेडी और नॉट टू हिया आइकम डिजिटल प्लेटफॉर्म तोगा रिलीज कुरिता एम में दुहे के तेरेगा आदया खिलाफ बड़ कामयाब हो दैफी रिपोर्ट तबुनिगतगा 7 मिलियन डॉलर के बजट को उफेदी में फिल्म पेपर व्यूअर रिलीज कुरिता एम में दुहे के तेरेगा वनी एगे बजट के तीन गुना आमदनी के गुतगा होता फा आदि मिहातन सिनेमा तोगा दक्का गेंगे कनिवेस फिल्म वनी दुनिया के बॉक्स ऑफिस होगा 43.3 मिलियन डॉलर दिबिफा ए फिल्म डिजिटल को रिलीज कुरी मिमो के फस बनत वहु रिलीज कुरी ता कुडा वगुत कोले के तेरे का अमेरिका के Amazon TV स्टोर के एवपना के मकाम फिल्म वनी हो दाफा फुरतम बैगवेस लीड रोल कुलुनु समारा विविंग मि फिल्म के मै रोल उन फेनेरो कैथरीन न्यूटन आदि सारा मिशेल के लावेस मि फिल्म का मुहिम रोल ता कुले फवे मि फिल्म लिबे मुंग अंडा बोर तरखी बा कुडी के फिल्म दायरा के किना मि हु बुननी मि फिल्म सीरीज के तिम वन पय उ फेदु म लिबुनु वर पोडु हिवर का वाने कमा रेडियो नोट के फुरतम बा इतिहास नवार वना रिलीज कुरीरु ए फिल्म विश्वनी फंसास हम मिलियन डॉलर के आम दनियल दिबिफा डिजिटल को मि फिल्म गन्ना मि हुना फिल्म के इतुरुं कैमरा फुरगाउ के मंजर तका इंटरव्यू तो के इतुरुं फिल्म उनिको फवा पाए मंजर तवस बला लेवेने
3: You've caused quite a stir, Mrs. Nadomas. You married into that family. Now they're dead. What you didn't know is that this goes far beyond them. By surviving hide and seek, you've triggered a new game. This time against the High Council families. Double or nothing.
4: And this part will be familiar.
3: They will try to kill you.
5: Welcome to our home.
3: Hunters, may the best family win.
6: Skippy screams.
3: The game begins in 5, 4, 3, 2, 1.
7: I'm not playing.
4: Okay. Prunella, kill the sister.
5: Whoever wins runs everything.
7: Everything?
4: The world.
7: Can't believe you dragged me out of this shit.
8: It's exciting. Well, exciting for me. It's terrifying for you.
9: Clear.

0: अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: हर चीज करो, लिमिट क्या, लेकिन प्यार लिमिट के बहुत बाहर।
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया।
3: We Dugarpur men are not cut out for marriage. आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की। Did you know that?
4: Mainland, checking.
5: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में। जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
4: Hi, I'm Anjali.
6: I'm married. I mean, Vinay. Vinay Malhotra.
7: आज जरूर करूंगा, छोडूंगा नहीं।
1: Happy anniversary.
0: पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया।
1: ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अब जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
0: आर यू नो बदमाशी।

0: बीस से देखे चोरे फिर
1: आपको उदयपुर जाना है, हम आपको उदयपुर ले जा रहे हैं। अब इस बीच में आपको भीर जाला देखनी
2: You know I love you, right?
3: Yes. मैं शादी नहीं कर सकता।
4: रे बावली, कौन क्या देखेगा? आज तक मन ने कुछ ना देखा, प्लीज आज ना रोक।
0: कौन है ये बाबू?
5: राहुल, कामिनी के बचपन का प्यार।
2: हमारा घर जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है ना आने वाला कल।

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकड़ दिवे राज्य के डूं
3: हितु के उफ़ेदे कोमे शोरे नहरें फाल कुरनी दिवे ही पहुँ
4: तिया लुकुन नवनी नुलाई को थोनो भी हम खंडी तकुदशा मैं दुवेस माफ़ंगे दे वे भी फाकुशे वाणम कुशा
3: आहरें दिरी उले माहादु गाहुन ने चसं आहरें इशारे कुरनी एच्चक किया दिवे ही नमु
5: नागिले रबारो बोला लांबो काकुनी
6: दिवे बहकी मुसंदि बहे
7: एहारा मिहारुगे फिल्म तोगे हिग्गे मंजर तका लवतोगे तेरिया फीना लमा
8: ए बलम हिरा लतीफा कोंता का गोस्तत ती अन्ननी ए मुने
9: बेवानी किहिने बा
10: दिलो फो वेचे हिंगवस वेचे उले हिंगीरे हलु
9: मी दाना डेटा
7: आदि अघोरी नाम काय को टिकटॉक चैलेंज वेस
1: कम में आदि तो दोहे करेगा ना कार जहर स्टूडियो में बागुतु
7: स्क्रीन इंहा सतरस्तिया का सारिस न्यू किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि 800 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड इंतजार कर लो
3: दारी ने कि मैं अल्लो हवाल करवा फावा अमाना थे।
11: दारी ने कि मैं बफेंगे लोलो के फिनी कं।
3: ए दारी ने हियो मकु दक क्या दिन मकि मैं बफेंगे जीम्मा।
11: ए हित्तकुके मामेला मिली, ए हित्तकुके मामेला मिली, ए हित्तकुके मामेला
7: बुरास्पति दोहगे मेंदुरु तेज जहायरु रिपीट हुकुर दोहगे रेगनु दिहे जहायरु आदि होनहिर दोहगे मेंदम एके जहायरु
6: इत्तकुगे मामेला मिले
12: एम्मे सीधा वेगेंबा थेदु मगुगा साबित वे हुरुमा
11: इस्लाम दीनुगे अगीदा वरुगद कुरुमा
12: देदुनियेगे हळयाय बाच्चवेरि कुरुमा
11: इस्लाम दीनुगे कंकमा गुळेगुतुं दीनी इल्म वेरिन्ना सुवाल कुरवा